पत्थर लेके आते थे, सीने पे रख देते थे, भारी पत्थर। पत्थर क्यों रखते थे? क्योंकि सैयदना बिलाल जब भी उन्हें घसीटा जाता तो जुबान से कलमा तौहीद निकलता, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। जिसकी वजह से वो जुल्म कर रहे हैं वही कलमा मुंह से निकल रहा है। तुमने देखा खामोशी, इसको खामोश करने का तरीका भी हमारे पास है, तो बड़ा सा पत्थर सीने पर रख दिया। आपको पता हम बोलते कैसे हैं? सांस लेते हैं फिर बोलते हैं। जब पत्थर सीने पर रख दिया जाता है तो सांस कैसे लेंगे? सांस लेना दुश्वार हो जाता है कि नहीं? मुश्किल हो जाती है। तो उन्होंने जब ला इलाहा इल्लल्लाह नहीं कह सके तो अहदुन अहद कहना शुरू कर दिया। अहद कहने के लिए लंबे सांस की जरूरत नहीं पड़ती, जो हवा बाकी है थोड़ी सी फेफड़े के अंदर वही काफी है। और ये सबसे आसान अल्फाज हैं जो कोई भी इंसान बोल सकता है। देखें, अल्लाह कहने के लिए, लाम कहने के लिए थोड़ा सा आपको सांस लेना चाहिए, मुश्किल है। लेकिन अहद अहद अहद बिल्कुल आसान है। तो उन्होंने अहदुन अहद कहना शुरू कर दिया, एक है मेरा रब, एक है मेरा रब, एक है। वही कलमे तौहीद का पैगाम। कोड़े मारना शुरू किए, मारते मारते थक गए, सैयदना बिलाल बेहोश हो गए, अपने दीन से जर्रा बराबर नहीं हिले और ना ही उनका ईमान हिला है। पहाड़ों की तरह मजबूत ईमान भी और सब्र भी। सैयदना बिलाल से पूछा गया, उनके शागिर्द ने सवाल किया, आप सब्र कैसे करते थे इतनी सख्त अजाब में? और सब्र, आखिर आप भी इंसान हैं, गोश्त से और हड्डियों से बने हुए हैं, आप भी तकलीफ होती ही होगी, तो सब्र कैसे किया था आपने? फरमाते हैं, मुझे सिर्फ यही पता है और यही ईमान था, जिसकी वजह से तकलीफ दी जा रही है तकलीफ वही दूर करेगा। और जब उनके अजाब की तकलीफ ईमान की मिठास के साथ मिल जाती थी तो तकलीफ दूर हो जाती थी और ईमान की मिठास बाकी रह जाती थी। यह सैयदना बिलाल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु थे। और कुछ ही अरसे के बाद जंग बदर में यही अजाब देने वाले अबू जहल और उनके साथी उन्हीं का सर था और सैयदना बिलाल की तलवार थी। जुल्म ज्यादा अरसा नहीं रह सकता मेरे भाइयों, जुल्म की हद है। और जुल्म जब टूटता है तो अपने साथ जालिम के हर जुल्म को लेके जाता है, पीछे कुछ नहीं छोड़ता। यह तो एक शख्स था जिन्होंने हर तकलीफ बर्दाश्त की, अल्लाह उन पर राजी हुआ। इस तकलीफ के बावजूद भी वो अल्लाह ताला पर राजी थे। अल्लाह ताला तेरा शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ली हाल। तकलीफ में अल्लाह का शुक्र अदा किया जा रहा है। हमारा क्या हाल है? हम अल्लाह ताला का शुक्र कब अदा करते हैं? जब हमें कोई नफा पहुंचता है तब। शादी हुई तब अल्लाह ताला याद है शुक्र अदा किया, औलाद आई तब अल्लाह ताला याद आया तब शुक्र अदा किया, नौकरी मिली तब अल्लाह ताला याद आया तब अल्लाह का शुक्र किया। अलगर्ज जब भी कोई हमें नफा पहुंचता है, फायदा होता है, तब अल्लाह ताला का शुक्र करते हैं। सैयदना बिलाल को देखें,

सब जानते हैं इलाह का माना क्या है, मबूद बर हक, ला इलाहा इल्लल्लाह का क्या माना है? हम सब जानते हैं ला मबूद बर हक इल्लल्लाह। टेक्नोलॉजी क्या है, फेसबुक का लोगो क्या है, यूट्यूब का क्या है, हम जाने या ना जाने कोई फर्क पड़ता है? मुसलमान को या किसी भी इंसान को अगर वो मर जाता है और उसे फेसबुक का लोगो नहीं आता या उसे यूट्यूब जानते हैं, यूट्यूब होता क्या है, कोई फर्क पड़ेगा उसे? अगर मर जाता है उसे ये नहीं पता कि ला इलाहा इल्लल्लाह का माना क्या है, फिर फर्क पड़ेगा कि नहीं? आज हमारे बच्चे भी जानते हैं टेक्नोलॉजी क्या है। मैं वक्त कम है, इससे डबल लिस्ट और भी कर सकता था, मुझे पता है सब का जवाब सही होता। आज का मुसलमान टेक्नोलॉजी में पीछे नहीं है, इंफॉर्मेशन और इल्म का सैलाब है, समंदर है, सब रगोते लगाए हुए हैं। हमने भी लगाए हैं, हमने भी देखा, हमने भी जाना है। क्या हमने ये जाना है कि ला इलाहा इल्लल्लाह का माना क्या है? आज मुसलमान उम्मत पीछे क्यों है, जलील क्यों है? आज हमें दुनिया जहां की हर चीज की खबर है, हर चीज का इल्म है, जिसके नहीं होना चाहिए तो उसका भी इल्म है। अगर नहीं है तो ला इलाहा इल्लल्लाह का सही माना हम नहीं जानते, इल्ला रहमतुल्लाह सुभान व तआला। बहुत कम लोग ऐसे हैं जो जानते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन पूरी उम्मत का क्या मामला है, कहां पर है? इस बेहतरीन महीने में, बरकत के महीने में, अगर हम सब कुछ जान चुके हैं अभी तक, लेकिन ला इलाहा इल्लल्लाह नहीं जाना, तो फिर हम कब जानेंगे? वो कौन सा इल्म है जिससे अल्लाह ताला राजी होता है, जिसे अल्लाह ताला पसंद करता है, जिस इल्म से दर्जे बुलंद होते हैं? अल्लाह ताला फरमाते हैं यरफ़ुल्लज़ीना आमनू मिनकुम, अल्लाह ताला तुम में से ईमान वालों में से उन लोगों के दर्जे बुलंद फरमाता है, अल्लज़ीना आमनू मिनकुम والذين اوتوا العلم درجات, ईमान पहले है, الذين امنوا منكم واوتوا العلم, जिनको इल्म दिया गया है दर्जे बुलंद होते हैं। कौन सा इल्म है? फेसबुक का इल्म है, ट्विटर का इल्म है, गूगल का इल्म है, कौन सा इल्म है ये? فعلم انه لا اله الا الله, ये इल्म है। और जिसे ये इल्म आ गया है उसके दर्जे दुनिया में भी बुलंद है, आखिरत में भी बुलंद है। बाज़ लोग कहते हैं यार हमें तो समझ आ गई है, अल्हम्दुलिल्लाह हमें पता है, अल्लाह का शुक्र अदा करें। अगर आपको पहले से इल्म है तो अल्लाह का शुक्र अदा करें। अल्लाह ताला फरमाते हैं लैन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, हमारे पड़ोस में, हमारे रिश्तेदारों में, हमारे माशरे में, हमारे मोहल्ले में कितनी ऐसे मुसलमान हैं जिनको ला इलाहा इल्लल्लाह का सही इल्म नहीं है, उनके लिए हमने क्या किया? मुझे तो पता है मैं घर में सो रहा हूँ, बस क्या किया मैंने दूसरों के लिए? आज मुसलमानों की अक्सरियत कलमे तौहीद से नावाकिफ है। कौन पहुंचाएगा यह पैगाम उनकी तरफ? वो खुद नहीं आएंगे आपके पास चल के पूछने के लिए, आप क्या करोगे? मैं ये नहीं कह रहा कि बाहर जाकर चिल्ले लगाओ, मैं ये कह रहा हूं कि इल्म हासिल करो, इल्म हासिल करने के बाद इल्म को शेयर करो, अपने ऑफिस में जहां पर काम करते हो उनसे डिस्कस करो, उन तक इस पैगाम को पहुंचाओ। और जिसे अल्लाह ताला ने ये समझ दे दी है, अल्लाह ताला के प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मन युरिदिल्लाहु बिही खैरन, जिसके अल्लाह ताला बेहतरी का इरादा करता है, इसके लिए खैर चाहता है, उसे क्या डॉक्टर बना देता है, इंजीनियर बना देता है, पायलट बना देता है? अल्लाह ताला के तराजू में वो कौन है जिसके अल्लाह ताला बेहतरी चाहता है? युफक्किहु फिद्दीन, अल्लाह ताला उसे दीन की समझ अता फरमाते हैं। दीन की समझ की बुनियाद है ला इलाहा इल्लल्लाह, और ये बुनियाद अगर अभी तक हमने नहीं समझी तो अभी सांस जारी है, वक्त है समझने का। और भाइयों ने इस छोटे से तोहफा आप लोगों के लिए तैयार किया है, कलमे तौहीद का मायना, एक छोटा सा पंफलेट है जिसमें आपको कलमे तौहीद का सही मायना क्या है, अरकान क्या है, शुरूत क्या है, सब इसमें मौजूद है। और रमज़ान के ताल्लुक से या मुख्तलिफ सीडीज़ हैं, ये कलमे तौहीद का मायना भी अगर आपने पूरा सीखना है तो सीढ़ी भी साथ दी हुई है। थोड़ा सा वक्त निकाल के अगर आप रोज़ाना 20 मिनट निकालते हैं

0: चलो अभी पूछ लो, अभी बता देता हूं, लेकिन ये अगले दर्द का सवाल है। सलातुल कियाम जो है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी प्यारी बात फरमाई है, जिसने इमाम के साथ नमाज पढ़ी जब तक कि वो नमाज से फारिग नहीं हो जाता, उसके लिए अल्लाह ताला ने पूरी की पूरी रात का कयाम लिख दिया है, पूरी रात का कयाम। ठीक है, पूरी रात का कयाम अल्लाह ताला लिख दिया है। अगर आप खुद इशा की नमाज पढ़ लेते हो, फिर अलग से सलातुल कियाम की तरह पढ़ लेते हो, उतनी पढ़ोगे उतनी सवाब होगी जितने पढ़ोगे, तुमने पढ़ा है बस 8 रकाते 11 रकाते जितने पढ़े आपने। लेकिन इमाम के साथ अगर आपने पढ़ा है तो सारी रात का कयाम लिख दिया गया है, और जो अलग से जाके पढ़ोगे तो वो आपके नाम अमाल में और इजाफा होगा। तो इसलिए इमाम के साथ पढ़े, इमाम के साथ पढ़ने की बहुत बड़ी फजीलत है। सलात तरावीह और कयाम आखिरी 10 में अलग अलग हो जाती हैं, शुरू में एक ही होती है, चाहे शुरू में चाहे आखिरी 10 में। कायदा यह है, इमाम ने शुरू की इमाम के साथ शुरू करें, अगर जो लेट भी है थोड़ा सा, यानी 1 रकत 2 रकत लेट होगी ईशा की नमाज में, तो आप इमाम के साथ ही हैं, वही शुमार होगा। जब तक के इमाम तरावी पूरी नहीं कर लेता, आपने साथ नमाज पढ़ी है इमाम के, इमाम के आप भी चले गए, यानी पूरी तरावी पढ़ के या जितना उसने पढ़ी आपने उसके साथ उतनी पढ़ी है, आपके लिए सारी रात का कयाम का सवाब लिख दिया गया है। जी आप जहां पर पढ़ उसकी बात हो रही है, जिस इमाम के पीछे आप पढ़ रहे हैं उस इमाम की बात हो रही है, उस इमाम ने 11 पढ़ी तो 11, 20 पढ़ी तो जितनी वो पढ़ रहा है। और आमतौर पर हर में देखें एक इमाम नहीं पढ़ाता, दो इमाम पढ़ाते हैं। आप अगर पहले इमाम के पीछे पूरी पढ़ ली तो आपके पूरी रात का कयाम लिख दिया गया, दूसरे का पढ़िए नहीं पढ़ी पढ़ेंगे तो और सवाब है, पूरी रात का कयाम तो लिख दिया गया है। आप पढ़ेंगे 1 बजे तक, आपका सवाब लिख दिया गया फजर की अजान तक, वो सवाब आपका पूरा मिल गया आपको, बाकी जो आप एक्स्ट्रा पढ़ रहे हैं वो आपकी एक्स्ट्रा नमाज है। सुभानक व बिहमदिक अशहदु अन ला इलाहा इल्ला
1: अंता अस्तगफिरुक। पढ़ना और बाज़ों का छोड़ना इस अकीदे से कि अल्लाह के प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ 3 दिन पढ़ी थी, ऐसे अमल कहां तक दुरुस्त है। तरवीह की नमाज फर्ज नहीं है, तरवीह की नमाज का ताल्लुक रोजों से भी नहीं है। बाज़ लोग समझते हैं तरवीह की नमाज नहीं पढ़ेंगे तो रोजे पर कबूल नहीं होंगे, गलत है। तरवीह की नमाज मसनून है, मुस्तहब है। जो बाज़ औक़ात नहीं पढ़ना चाहता वो अपने आप को खैर से महरूम करेगा, वो कुछ भी नहीं। तरवीह की नमाज जो नहीं पढ़ता वो अपने आप को खैर से, एक अजीम खैर से महरूम करता है। अल्लाह ताला के प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जिसने इमाम के साथ इशा की नमाज पढ़ ली और तरवीह की नमाज भी पढ़ ली, यहां तक कि इमाम अपनी नमाज से फारिग हो गया, तो उसके लिए सारी रात का क़याम लिख दिया जाता है। सारी रात का क़याम यानी आप मस्जिद में दाखिल होते हैं, इमाम के पीछे इशा की नमाज पढ़ ली और इसी इमाम के पीछे आपने तरावीह की नमाज भी पढ़ ली, वितर भी पढ़ ली, इमाम नमाज से फारिग हो गया, आप मस्जिद से बाहर निकल गए, आपके लिए अल्लाह ताला सारी रात का क़याम लिख देगा। गोया कि आप काम पर बैठे हैं, आप दुकान में बैठे हैं, आप सो रहे हैं, अल्लाह ताला के नज़दीक आप नमाज पढ़ रहे हैं, अजर लिख दिया गया है। तो जो तरावीह की नमाज नहीं पढ़ना चाहता तो अपने आपको इस खैर से महरूम करता है। रह गई ये बात, अल्लाह ताला के प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्यों सिर्फ 3 रातें पढ़ाई, इसका जवाब अल्लाह ताला के प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद फरमाया है, ताकि तुम पर फर्ज ना हो जाए। अगर अल्लाह ताला के प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरा महीना पढ़ा देते तो तरावीह की नमाज भी फर्ज हो जाती। हम 5 फर्ज नहीं पढ़ सकते, जिन पर 5 मिनट लगते हैं पढ़ने में, तरावीह की लंबी नमाज कौन पढ़ सकता, तो अल्लाह ताला की रहमत है। लेकिन यह मतलब नहीं क्योंकि अल्लाह ताला के प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ 3 रातें पढ़ी तो हम भी सिर्फ 3 रातें पढ़ें, यह खिलाफ सुन्नत है, क्योंकि इस पर सहाबा का इजमा है कि तरावीह की नमाज बाजमात पढ़ी जाएगी और पूरा महीना पढ़ी जाएगी। जो शख्स नहीं पढ़ता या सिर्फ 3 रातें पढ़ना चाहते वो खिलाफ सुन्नत अमल करता है। हाँ, नहीं पढ़ना चाहते खुद तो आपकी मर्जी है, खिलाफ सुन्नत समझकर सिर्फ 3 रातें पढ़ना ये खिलाफ सुन्नत है, सुन्नत नहीं है ये। क्योंकि सुन्नत क्या है? अल्लाह ताला के प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका।